जागन पिछले पैर गुरसिख दा जीवन है अमृत वेले जाग के इशनान करे ते अपने मालिक दे चरणा विच जुड़ के जपे श्री क्योंकि सब तो पहला अपने ऊपर आप भला करना है मनुख ने नींद का त्याग करना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का यह सच का मार्ग सानू यह नहीं दसता कि पहाड़ां दियां कंदरां विच जाके पुठे लटक जाओ तां प्राप्ति होवेगी जां घर बार त्याग दिओ ग्रस्त त्याग दिओ नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे हन ऐ गुरु के सिख जे त्याग करना है तां अमृत वेले नींद दा त्याग कर इशनान कर ते अपने मालक दे चरणां विच जदों जुड़ेगा तां गुरु दे ओ बचन बाणी दे बचन ओ बोल तैनू एडे मिठे लगनगे कि तेरे प्राणा दा आधार बन जाणगे। इसलिए जिन्हां ने ए नाम दा रस पीता है आनंद माणिया है ओ ए समां कदे शौंके नहीं बिता सकदे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वादे जो 3 बजे ठीक कीर्तन आरंभ हो जांदा सी आप तां 12:15 बजे इशनान करके जुड़ जांदे सन गुरु नानक दे चरणां विच। ठीक 3 बजे कीर्तनियां सिंघां ने जे आके कीर्तन आरंभ नहीं कर दिता तां फिर आप शरंदा लैके गुरु साहब दे चरणां विच जुड़ जाना आप कीर्तन करन लग जाना। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत ताड़ना करनी कीर्तनिया नूं क्यों भाई तू 5 मिनट लेट आया है उस निरंकार की सच्ची दरगाह विच्चों सचखंड विच्चों तेरे 5 मिनट कटे गए हैं दस इहदा देना कौन देवेगा जेड़े 5 मिनट तेरे बिना जपण दे एवें बीत गए अमृत वेले दे उहदा कौन मुल चुका सकदा है। विचारी साडा जीवन सारा जीवन सौं के बीत जांदा है सानू कोई ख्याल तक नहीं आउंदा पर जिन्हां नूं श्वासां दी कीमत दा पता है ओ अमृत वेले जाग के फिर जदों आनंद माणदे हन तां उहनां दे रसदां तों मुड़ मुड़ ए शब्द निकलदे हन।

एकोंकार सत गुर प्रसाद सत्संगियो एक ओंकार परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम सत है, मिलता किमें गुरां की कृपा दृष्टि दे सदका। ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं

कोई छे छे कर्म सत्सत कर्म साधु ही साधु खलोते है, पिछे पिछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भगवान है वह उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले उस समय याद आता उस वेले ऐं लगता है भी किन्नी धरती हरियाबली है, से संत पे हरियाबले जिन्ना मेरा सतगुर देखा जाए। अखा उन्होंने दे विच भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागा वाले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर नूं चलिया पर रोण बंद नहीं हुंदा, मैं की करा। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवां, जी करदा सी उची उची भुवां मारां। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन।

एक जामा जिहड़ा सी ओ लखनऊ दे विच होया, एक जामा जिहड़ा सी उस जामे दे विच तां उत्थों दे नवाब सन, पर जिहड़ा उस तों बाद सी एक समा जिहदे विच बड़ी वड्डी बंदगी कीती, उस समा अजिहा सी एक छप्पड़ सी। भागम वाले उस छप्पड़ दे विचकार एक बोड़ दा बेरे सी, पानी दे विच जिसने लंघना लंघ के बाबा जी दे कोले जाना, लक लक पानी सी। पर बहुते जेड़े सन उन्होंने डरते रहना उस दे नेड़े ना जाना। एक बड़ा बड़ा उथे सरप रहिंदा सी, उसने बाबा जी दे पिछे अपनी कमर रख लेनी, सराहना जिहड़ा सी उसके नाल ला के बैठ जाना। जिहड़ा उसका मुख सी किसे वेले जिस वेले धुप होनी, उसने बाबा जी दे मुख दे उते छां कर लेनी, नाल नाल कलोलां भी करनिया, नाल नाल बाबा जी दे नाल भी रहना। गुरमुख जनो, जे कोई किसे पदार्थ नूं लै के आवे, पहले समय दे विच किसे वेले बाबा जी ने आख्या, भाई तुसी आ जिहड़ी टोकरी है इस दे विच रख देना। भागा वाले प्रसाद उस दे विच रख लेना, उसने अपनी पूछ नूं पानी दे विच लै के जाना। भागा वाले ओ जिहड़ी उस वेले बनाया होया बक्सा सी, उस नूं अपनी पूछ दे नाल खिंच लेना। इसे तरह ही करद्या करद्या किन्ना समा जिहड़ा सी गुजरदा गया। जे बाबा जी दा जी करे पांच सत दिन बाद पूजन छक लेना, ना जी करे ना छकना। ये समा सी बड़ा ही बीतिया। जेड़े उत्थों दे रहण वाले सन जिस वेले उन्हां नूं कुछ पुछदा सी भी महापुरशां दी उम्र किन्नी है, हर एक ने कहना भाई साडी तां तीजी, किसी ने कहना चौथी पीढ़ी हो गई है। बस इसे तरह ही वेखदे आ, ना ये किसी वेले अखां खोलदे आ ते ना ही इन्हां नूं कदे टुरिया फिरदिया देखीदा। आ जिहड़ा भोजन है ना किसी ने असी छकदिया वेख्या, रख जरूर जाने हैं, पता नहीं वो भोजन कौन छकदा किधर नूं जांदा, इस गल की भी समझ नहीं। गुरमुख जनो, किसी ने कहना भी पांच पीढ़ियां हो गई असी इसे तरह तकी जाने हैं, इन्नी बंदगी की कोई अंत ही नहीं, पता नहीं भी वो बंदगी जिहड़ी सी किवें कीती। भागम वाले एक एक बाबा जी का रोम सी, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, उहदे विचों जिहड़ियां आवाज़ां सन उही आउंदियां सन परमेश्वर दे नाम दियां, इहो जी उहनां दी दिशा सी। भागम वाले जिस वेले समा आया दरगाह दे विच गए, सारा शहर जिहड़ा सी ते आला दुआला उस वेले दी गिनती है कोई उस वेले दे नेड़े तेड़े दे जिहड़े सन 70-80 नगर जिहड़े सन उस समय ते पहुंचे। किसे दा दिल नहीं सी करदा भी असी अगे जाइए, ना बाबा जी दा शरीर उस वेले कोई काला, ना उस वेले कोई ए भी उस दे विचों दुर्गंधी होवे। जिमें क्यौड़ा छिड़किया हुंदा इस तरह सारे छप्पड़ दे विच उस जगह दे विच एहो जी वाशना जिहड़ी सी आवे। जिन्ने भी आए आके नमस्कार करके बैठे रहे भी पातशाह ये सर्प तों किवें असी तुहाडा शरीर लईए। जिमें जिमें सारियां संगतां कट्ठियां हो गईयां, नेड़े तेड़े दे जिन्ने भी महापुरश सन वह भी आए, उन्होंने आके सारिया ने हथ बन के बेनती की भी हुण साडा जी करदा भी तुहाडा ये जिहड़ा शरीर है इस नूं असी लईए। गुरमुखी जनों, शरीर जिहड़ा सी बाबा जी दा कई दिन तों बाद जिहड़ा सर्प सी वह ओले हो गया ते उस शरीर नूं लै के आए, अमाम बाड़े दे विच लिया के इशनान कीता। जिस वेले इशनान करवाया वेखण भी अंग अंग मुड़ी जांदा है,
जे उंगला मुड़न वो भी मुड़न, जे बाबा जी का हाथ मुड़न वो भी मुड़े। उस वेले एक कुर्सी सी न भाभी, उस कुर्सी दे उते बाबा जी ने बिठा दिता। भागा मल किसी नू ए नहीं सी पास पैंदा भी शरीर छड गया जां शरीर दे विच है। सिख संगत बड़िया दर्शन करने वास्ते आईया, कहन लगे इस तरह करो भी हुण इन्हां ने इस जगह दे विच तप तो बड़ा बड़ा कीता, पर आ जिहड़ा अमाम बाड़ा इस जगह दे विच आपां इन्हां दा जिहड़ा शरीर है उस शरीर नूं आपां रख दईए, दफन कर दईए। सारे शहर दे विच जिस वेले बाबा जी दा दीदार करवाया, उस वेले दे समें दा दर्शन कर करके सारे दे मन जिहड़े सन प्रसन्न हुंदे तुरे गए। अमाम बारे दे विच बाबा जी दा शरीर जिहड़ा सी उस नूं दफना दिता। गुरमुख जनों समा जिहड़ा सी आउंदा रहा जांदा रहा। गुरु गरीब नवाज जी महाराज फरमाउंदे आ, बलहारी गुरापना सदा सदा कुंभ बारिया, गुरमुख जीता मन मुख हारिया। भागा वाले उस वेले जिन्हें भी सन सारिया ने कहा भी दिन वेखो, विचार करो भी दिन केड़ा है। भागा मलियो ओ समा जिहड़ा सी ओ भी आही समा सी जिसनों अमावस दा समा कहिंदे है। भागा मलियो बाबा जी दा जाना अमावस नूं, आउणा पूरनमाशी नूं, पता नहीं ये किन्ने क समयां तों बणिया टुरिया आया। पता नहीं वो बख्शिश जिहड़ी सी किवें किवें वंडी, किवें किवें संसार नूं बख्शिश दे के चले गए। अज आपां उन्हां दी याद दे विच इकट्ठे होए हैं। भागा वाले समय हो के गुजरते रहे, किसे वेले किसे जामे दे विच, किसे वेले किसे जामे दे विच, पर भागा वाले जिस जामे दे विच हुण आपां दर्शन कीते है ये जामा नजर आउंदा है। भागा वाले उन्हां दे शरूप नूं वेख वेख के ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਫੱਕੜੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤਾ ਮਨ ਮੁਖਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਕਰਨ।

0: अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पाले, बहुत दुख उठा ले जमन मरन, बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़के जन्म ना होवे। बोलो
1: सतनाम,
0: जमन मरन तो मुक्त कर दियो। ये सारे पवाड़े जमन मरन करके ही सब नो वड़ा दुख जमन ते मरन दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरन कट दियो। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमना मरना कट देवेगा, वो तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहिंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तो जन्म ये मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है, हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है, नहीं। महाराज कहंदे हन जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

हर जन राम नाम गुण गावा। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावा। हर जन राम नाम गुण गावा। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावा। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावा।

जन्म केवल नाम जपन दई शानू प्राप्त होया है। निरंकार ने 84 लाख जून संसार ते साजना की थी। 84 लाख तो एक काट सी। निरंकार दा मन पसीजिया नहीं ते जदों मनुख दी साजना कीती ता निरंकार प्रसन्न हो गए। अपना रूप वेख्या मनुख दे विच, अपना स्वरूप दिता मनुख नू ते 84 लाख जून दा बादशाह बना दिता। इस ऊपर तेरी शिकदारी अवर जून तेरी पनहारी। ऐ मनुख सारियां जूना होर तेरे पानी भरन वालियां तेरी सेवा करन वालियां होनगियां। पर वेखी मनुख होके मनुखां वाला काम करी। ऐसा ना होवे तेरियां करतूतां पशु वालियां होन, होवे तू मनुख। ऐसा ना होवे निरंकार दे बख्शे होए अमोलक हीरियां लालां तो भी महंगे श्वास, तू कौडियां दे वटे जाया कर दे में। ऐसा ना होवे जिस वाहिगुरु ने तैनू अरोग कंचन वर्गा शरीर दिता, तू उसनू सेवा सिमरन परपकार करन दी बजाए विकारां विच पापां विच ला के गाल देवे। हजूर बख्शिश कर दियां भाई, इस शरीर रूपी धरती दे उते मन नू हाली बना, करनी नू किरसानी बना, नाम दा बीज वो संतोख दा सुहागा रख। जो वाहिगुरु ने दे दिता है सबर संतोख कर, लख लख शुक्र कर उसका। जो कुछ वाहिगुरु ने दिता है अरदास कर, हे निरंकार मैं इस योग नहीं, जितना तू दे दिता है जितनिया रहमतां तू कीतियां हन, जे करोड़ जन्म पाके भी तेरा शुकराना करा तां भी नहीं कर सकता। हजूर कहंदे ने इस शुभ कर्मा रूपी खेती विच बीज वो नाम दा ते फिर बड़ी प्रफुल्लत होवेगी। ऐ मनुख फिर निम्रता दी वाड़ रखी, किते भले कर्म करदिया होया तेरे मन विच हंकार ना आ जा। जिस खेती नू वाड़ ना होवे उस खेती नू पशु जानवर उजाड़ जांदे हन, किते तेरी भी शुभ कर्मा रूपी खेती उजड़ ना जावे। इसलिए निम्रता विच रही, सब कुछ करदिया होया भी निरंकार अगे अपने गुनाह बख्शावे। अमृत वेले दे जागण दी दात मंगी, नाम दी दात मंगी गुरु कोलो, हर वेले उदे निर्मल भाव विच रवी। क्योंकि यही एक रुत है, यही एक जून है जिदे विच तू

और कोई जून नहीं जिदे भी तू सिमरन सेवा पर पुकार कर सके। दुर्लभ देह पाई वडभागी वड्या पागा करके तेनू प्राप्त हुई है। ते फिर इस विच नाम दा बीज वो नाम दा वणज कर, क्योंकि तू वणजारा है नाम दा। तू संसार रूपी बाजार विच नाम दा वणज करन आया। ऐसा ना होवे तू अमोलक हीरे मोतियां ते लालां दा व्यापार करन आया होवे, ते टुटिया होया कच खरीद के अपने घर रख लवे। ता ओ कच दे घर विच रहन वाला मनुख कदे जख्मी होण तो बच नहीं सकदा। ए जो दुनिया दे पदार्थ हन, असी रात दिन भजदे हां उन्हां पदार्थां दे मगर, किवें मेरे कोल हो जान। हजूर कहंदे ने ए कच दी न्याई हन भाई, इन्हां पदार्थां विच रहन वाला सदा दुखी ही रहंदा है। कोई सुखी नहीं होया, सुखी तां परमेश्वर दे नाम जपण वाले हन। उन्हां नूं पुछ कितने उन्हां दे चेहरे खिड़े हन, कितने नूर हन उन्हां दे मस्तक ते जो जपदे हन श्री वाहिगुरु। इसलिए नाम बीज लो, क्योंकि पता नहीं फिर ए मनुच्छा

तपस्या कोई करदा सी ते कोई विरले नूं वरदान मिलदे सन, कोई विरला तोड़ अपड़दा सी लखां वर्ष तपस्या करके भी। पर कलयुग दे विच हजूर कहिंदे ने भाई एक घड़ी भी तू मन जोड़ के गुरु दे चरणां विच जप श्री वाहिगुरु, ए पल तेरे सचखंड विच लिखे जाणगे, ए पल तेरे जीवन विच सुनहरी अखरां विच लिखे जाणगे कि तू सत संगत विच बह के जपिया श्री वाहिगुरु। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी जे एक घड़ी नहीं, एक घड़ी 24 मिनट दी होंदी है। हजूर कहंदे ने ओ जाने जे इतना ही तू ग्रसिया होया, इतना ही तंदिया विच फसिया होया, जे एक घड़ी भी नहीं समा कड सकदा तां 12 मिनट कड ले आधी घड़ी, ते जे इतना भी तेरे कोलो नहीं होंदा आधी हो ते आध, एदू भी अद्धी कर लै, पर कुछ तां करिया कर। जदों तू आया सैं तेरे कोल अमोलक श्वासां दी पूंजी सी, जो एक एक श्वास भी लखी हाथ नहीं आ सकदा, क्योंकि 24,000 साडा रोज दा खर्च है, 24,000 खर्च बंदे दा आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे को इतना घाटा सो बंदा किम जीवे। महापुरख कहंदे ने मैं हैरान हां जिदा 24,000 रोज कट रहा होवे वो किवें बेखबर है, किवें उसनू चिंता नहीं हुई, वो मोह माया दी नींदर विच सुता होया है, ते सुता मोया एक बराबर होंदा है। मनुख सुता होवे तां घर लुटिया जांदा है, पता नहीं लगदा। तेरा घर भी इसे तरह लुटिया जा रहा है, दिन रात 24,000 तेरे खर्च हो रहे हैं। ऐ बंदे तेनू कदे ख्याल नहीं आया कि इना विचों कुछ तो परमेश्वर दे भेटा कर देवां, इना श्वासां मेरे काम आवेगा। मामूली दुकानदार सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा है अज की खटिया की गवाया है, पर तू कदे अपने जीवन का हिसाब नहीं लाया कि अज कितने कु श्वास तेरे सिमरन विच बीते हन, कितने कु श्वास तो निंदिया चुगली करके उजाड़े हन, कितना कु नुकसान कीता, कितना लाभ होया है, तू कदे हिसाब नहीं करदा। इसलिए भाई एक मामूली गरीब मनुख जे 5 पैसे भी रोज रखने शुरू कर देवे ना, ते अखीर ते जाके कितना धन कठा हो जांदा है। ऐ मनुख 24,000 विचों कुछ ही परमेश्वर दे लेखे रोज लाई जा, ते जदों जाएगा तां ओ सतसंग दियां करियां तेरे कोल होणगियां, तेरा आया सफल हो जावेगा। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने ऐ कलयुग तू धन है जिड़ी लखां वर्ष कमाई करके तपस्या करके कालना करके नहीं सी दात मिलदी, एक घड़ी भी तेरे चरणां विच कलयुग दे विच कोई जुड़ जावे उदा संसार ते आउणा संसार तो जाना सफल हो जांदा है। इसलिए नाम बीज लो। महापुरख बाबा नंद सिंह जी महाराज बड़े प्यार नाल ये पढ़ाया करते सन गुरमुखो कि जीवन छेती नहीं मिलन वाला, मुड़ मुड़ नहीं मिलन वाला, इसलिए जितना जप लोगे तुहाडे कम आवेगा, तुहाडे नाल जावेगा।

तीर्थ उनों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आ यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउंगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजा है, ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। भाई लैणा जी खड़े हो गए, सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सन कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तू अपनी राह तू चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां।

गुरु अर्जन देव पातशाह, मैं कदे कोई जान बुझ के ऐसा कम नहीं कीता, क्योंकि आप दा बचन है उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। आप दा बचन है जिथे सिमरन शासक राज सिमरन करना, उथे अपना विहार भी शुद्ध करना, क्योंकि जिस मनुख दा विहार सच्चाई दे ऊपर है उसका परमार्थ आपे ही शुद्ध हो जाता है। जिदा विहार झूठा है वो जितना मर्जी है सिमरन कर लवे, वो सिमरन प्रफुल्लित नहीं होता। उच्चारण करो श्री हजूर कहंदे ने सत व्यवहार भी करना, जे तेरा विहार बिगड़ गया तो परमार्थ कदे नहीं सौर सकता। गरीब निवाज, मैं कदे जान बुझ के तो ऐसी गलती नहीं की, हुण मेरी पैज तू रखनी है। किसे दा कोई आसरा, किसे दा कोई आसरा, पर मेरा तो सबो कुछ तू ही है। जा अरदास करके पाई पतंग ने उस बलदे तेल विच हथ पाया, जाके पैसे कढ ले आया, बाहन कोई लाज तक नहीं लगी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हुण जमाल खान दी वारी आई, ओ भी करन लगा याद पर बाह सड़ गई। जदों हथ पान लगा तो हथ जल गया, बाह की पानी सी। उसे वेले उसनू ता दवाई दे अधीन उदा इलाज करन वास्ते भेज दिता। ते इधर पाई पतंग जी मन विच बड़ा खोब है, भाई मेरी वजह करके किसे नू दुख पहुंचे, ये क्यों पहुंचे। हे वाहिगुरु, जे इदी अमानत मेरे पास है तां कृपा कर मैं इदा बोझ उतार सकां। ते जां कोई गाहक सौदा लैण लई आया ना, भई फलानी चीज चाहीदी है, ते ज्यों ओ कुजियां खोलन लगे ना, ओ सौदे नू लभण लगे, ते विचों भाई जमाल दी दित्ती होई ओ थैली लभ पई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई साहब नूं भुल गया सी, झट थैली लैके 500 मोहरां हन

राज साज हम पर जब आयो, यथा सकत तब तर्म चलायो। कलगीधर पातशाह बड़ा सुंदर लिख दे ने, राज साध हम पर जब आयो, ए राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली, यथा सकत तब धर्म चलायो, जिन्ना भी हो सकया मैं इसनू अगे तोरन दी कोशिश कीती।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमक मटकी कान फोरं। कंदनी कृपाल चंद उदासी जी ने आए जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी छिछ इच्छन कदा मेट जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचो मगध दियां छिट्टां इंज बार आईयां जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दित्ती होवे।

मुदकर सों साहन पजो संग लेके सुसारी सुपाहन। सतगुरु कहते ये अपने आप नूं बड़े सूरबीर अखवांदे सन, लेकिन मेरे सूरबीरां दे सामने इन्हां दे पासों एक तीर भी ना चलिया, इत्थों तक कि अपनी सेना दी जान बचांदे जंग विचों नठ गए।

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो, अलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्हां दा ही है अलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी, कई तुकां दी अस्थाई दी तुक है। दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुणन को पहार है। अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करदा है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करदा है, ते ओ गुणां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन

भाई शाह भाई गुरदास जी इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन है।

निम्रता धारण करनी। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदियां होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जति है पर नारी ती भैण वखाणे, वेख पराइयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। ऐसा गुरसिख का पवित्र जीवन है जो भाई साहब दस

पंज प्यारे शुभ सुमति गुरमत अनुसार देंदे हन, उना ते चल के अपने जीवन नु रोशन करे, अपना जीवन सुधारे, क्योंकि हजूर दी बाणी बख्शिश कर दी है, भई रहत प्यारी मुझको। हजूर कलगीधर पातशाह कहंदे न, मैनू सिख प्यारा नहीं, मैनू ता रहत प्यारी है, जेड़ा रहत विच रहंदा है मैं ओदा दास हां, ओ मेरे सिर दा साहिब है।

अपने जीवन नू पवित्र रखना। तीसरा नियम, पराई वस्तु पई है उसनू हाथ तक नहीं लाउना, किसे भी इमानत विच ख्यानत नहीं करनी। चौथा नियम, ना किसे दी निंदा करनी है ना सुननी है। पंजवा नियम, जो गुरु कहिंदा है उस दे कहे होए बचना ते चल के अपने जीवन नू रोशन करना, अपने जीवन नू टालना। हुण छेवा नियम, भाई साहब दसदियां थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, क्योंकि गुरु नानक दे दर दा ए उपदेश है। किसे ने घर बार नहीं त्यागना, संसार नहीं त्यागना, ग्रस्त दा त्याग नहीं करना। हजूर कहिंदे हन अमृत वेले नींद दा त्याग कर दे, अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु, ऐसे विच ही तेरा लोक सुखी ते परलोक सुहेला होवेगा। भाई साहब गुरदास जी कहिंदे हन के जिन्हां विच ए छिया छे नियम कटदे हन उस गुरमुख नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई। सहज अवस्था की है? तुरदियां फिरदियां बैठदियां कारोबार करदियां मन करके ईश्वर दे चरणा विच वसना। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मनुख सदा अकाल पुरख दी हजूरी विच वस रहा है जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। छेवां नियम भाई साहब दसदे हन, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे।